शास्त्र मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: 好了，各位把你拿的最爱好的我在苗路我在苗路苗路没完的垃圾我在这儿电子过去完了过来牛的垃圾啊我先把你好我那啥我那啥我在这儿牛的我在这儿牛
1: 的तब ये टीटी बनी था चेन खड़ के जी तब ये वाली को संपूर्ण सामान और तब बैठे से रेंटल एंड कैटरिंग सर्विस चेन कर में पाया नहीं चेन
2: हजुर के सेवा में संपूर्ण नया सामान को साथ में सदरमुकाम सरीकोट में विवाह व्रत बंद सेमिनार सभा सम्मेलन उत्सव पिकनिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रम का लागि हामीलाई सम्झन होस्। हामी आवश्यक पर्य भोजपति तथा शुभ कार्य का लागि अनुभवी तथा दक्ष कुक वेटर मसालची उपलब्ध गराउँदछौं। यहाँ आवश्यक चाइनिज टेन्ट सायर कुर्सी भाँडाकुडा कार्पेट म्यूजिक सिस्टम बत्ती लगायत का सामान भाड़ा में पाइन का साथ ही हाफ तथा फुल क्याटरिङ पनि गरिन्छ।
3: ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्कको लागि कुमार श्रेष्ठ 9851242883 9841222883 र कृष्ण श्रेष्ठ 9864002041।
4: वैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरिकोट दोलखा।
5: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

कहते हैं इश्क खुदा दुआ है वफा है। कल 11 बजे कंस किला, अगर तुम नहीं आए तो इश्क फना है।

0: அப்பே வைனையே பாடை சொல்லி கொஸ்கு டிவி போக்கிற இடையோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்த
1: கொச்சை பரிலைலை கொஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொடி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஒயினே
0: चिंता गर्नु पर्छ त सदरमुकाम चरीकोट बाट चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स मा लैजाऊ न त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छ नि सके गर्ने
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्चदेखि माथिको एलइडी किन्दा 200 सिपेमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलइडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844-39-81-42 र 9844-061-814
4: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज